0: अत्यंत ही भैड़ा सुभाव पलटन वास्ते असे भूत प्रेत डाकनिया हुंदियां ने जिहड़ियां अथवा डीठ हुंदी नजर लगनी ये मसले आम तौर ते दबा दिते जांदे ने वी इह कोई चीजा नहीं हुंदियां इह फालतू गल्लां ने पर फिर लोग उधर नूं क्यों भजदे ने सो ऐसियां चीजां दा प्रभाव गुरबाणी अंदर गुरां ने मन्निया है जदों गुरु ग्रंथ साहिब दी कसवटी ते सब चीजां आ जांदियां ने फिर मुनकर नहीं होना चाहीदा समकां उहनां दा डट के आपां नूं मुकाबला करना चाहीदा गुरबाणी दे नाल ना कि इधर उधर भटकना चाहिदा महाराज ने इत्थे जपजी साहब दा इसे करके महात्म दस्सिया
1: मन जीतन रण मैं धरा राज काज सुख
2: राज काज दे विच मैदान जंग जाण दे विच राजनीति दे विच बाणी तां हर जगह ही सहायता करदी है जिहड़ा मर्जी महाराज जी तों आपां मंग लईए
1: मिलने गिलने बंद मैं राज योग उत्साही
2: बंद मैं बंद हुंदा रिश्तेदार रिश्तेदारां नूं मिलना गिलना वो तो आपां नूं पता ही है कई चीजां दा भी जदों बरात आउंदी है उदों शब्द पढ़दे हम घर साजने आए बाणी ही पढ़दे हैं आनंद कारजां विच फिर लावां दा पाठ पहला कीर्तन हुंदा है महाराज कहिंदे जपजी साहब भी पढ़िया करो जपजी साहब दा पाठ जिहड़ा है ये पढ़ना रिश्तेदारी च मिल जाना राजयोग दे विच कहण तो भाव कि एक चिंता मणी हुंदी है चिंता दूर करदी है एक काम तेन गऊ है उहदे कोल कोई इच्छा कर लो पूरी करदी है एक कल्प ब्रिछ है पर सतगुरु ने कहा कि इच्छा पूर्वक सर्व सुख दाता हर जाकै बस है काम तेना काम तेन जपजी साहब दे बस विच ही है फिर आपां काम तेन नूं कहनूं देखना है जां कल्प ब्रिछ वल कहनूं देखना है जां किसे होर वल क्यों देखना है महाराज कहिंदे फिर भाई जिहड़ा जपजी साहब पढ़दा है उहदा तां सिद्धा ही मतलब है कि उहदियां सारियां इच्छावां चाहे वह रजोगुणी है चाहे वह सतोगुणी है चाहे वह भगती है चाहे वह योग विराग ज्ञान उम्र का वाधा मंगिया चाहे घर का कोई काम है चाहे परलोक का कोई काम है सारे कारजां विच जपजी साहब की बख्शिश हुंदी है
1: इन कारज की अटक मैं पंच पचीसा जाप
2: हुण इन्हां कारजां विच जिहड़ा अड़िका पै जांदा है सो इस करके कहिंदे ने मूल मंत्र दा ही मुख है कि मूल मंत्र दा जिहड़ा अभ्यास है ना वो तुसी अभ्यास जां तां समां रख के करो बई रोज घट्टो घट्ट दो घंटे मूल मंत्र मैं पढ़ना है जां फिर नवे बंदे लई माला बई माला कुछ रखो बई मैं इन्नियां माला जिहड़ियां ने हर रोज करनियां ने घट्टो घट्ट 10, 11, 15, 20, 25 माला मूल मंत्र दियां अभ्यास वजों करनियां ने जे आपां थोड़ा करदे हैं मूल मंत्र ते आपां कम्मां दी इच्छा बहुत करदे हैं इस करके क्योंकि गृहस्थी दे कारज ही बहुत ज्यादा हुंदे ने तां ते सतगुरु महाराज कहिंदे मूल मंत्र दा अभ्यास जिहड़ा है वह थोड़ा ना करो हर वक्त पंजां प्यारे ने तां इही हुक्म कीता जद अमृत छकदे हैं भाई देखो अमृत वेले पंज बाणियां तां पढ़ लईआं हुण बाकी दा समां की करना सुखमनी साहब आसा दी वार ते चलो डेढ़ घंटा लग गया बाकी फिर कहिंदे मूल मंत्र ते गुरमंत्र उठदे बैठदे श्वास श्वास इन्हां दा जाप जिहड़ा करन नूं पंजां प्यारां दा हुक्म आपां नूं उही इत्थे दर्शाया भई हर वक्त मूल मंत्र दा अभ्यास करदे रहो
1: 36 जाप कर लाख अर्ध ते लाख
2: हुण इह जिन्ना क कारज है कम देखिया जांदा कम है इन्ना कम है 5000 मूल मंत्र है 25000 दा जाप है 36,036 अखरा भाव पुरातन समय विच 36 अखरा नानक होसी भी सच तक है 25 अखरा जिहड़ा उह जाप गुरप्रसाद तक है इन्हां चीजां नालों हट के आपां इको ही गल करिए कि मूल मंत्र दा जिहड़ा अभ्यास है जिहड़ा पंजां प्यारे ने बख्शिश कीता है इहदा जे चलो जे तुसीं इह कहो भी इह तां बहुत ज्यादे सत हुंदा नहीं इन्ना तां फिर घट्टो घट्ट 5-6 माला रोज कर देनियां चाहीदियां जां 11 माला ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 11 ਪਾਠ ਜਾਂ 5 ਪਾਠ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਿੱਖ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ

0: लोग जगत दे विच ऐसे माड़े कर्म करनगे जिहदे नाल दूजे का बुरा होवे नुकसान होवे। इस तरह संसार दे जीव मंद बुद्धि कारण पुठे कम्मां दे विच पैणगे, पर मेरा सिख इस पासे की चाहना ना करेगा।
1: एक समय मंत्री बहुत घर घर बाजै बाज।
0: एक समा आवेगा जदों मंत्रां दे सिद्ध करन वाले मंत्र धागे तवीत मंत्र जंतर करन वाले घर घर बाजा बजेगा इन्हां दा बुरा हाल। आपां पटियाले जी बैठे हां, बाकी शहरां दी खबर नहीं है आपां नूं। इह बॉम्बे कलकत्ते दिल्ली इन्ना पुठा काम है, लोग रोंदे ने उत्थे चीका मार मार के। बॉम्बे की संगत यह कहती है भी गुरबाणी च कोई ताकत ही है नहीं। उन्होंने तो सीधा ही यह नकारा ही करता सब कुछ इत्थे आके, भाई बाणी च कोई ताकत नहीं है। इन्नी बाणी पढ़ते हैं साडे घर चाहे चलता करता कोई। सो इस करके उत्थे जाके जदों यह कहीदा भी जे दसवें पातशाह ने इउं करना हुंदा श्री साहब क्यों महाराज लेंदे, जंग शस्त्रां नाल ही करके क्यों दिखाउंदे, क्योंकि दुश्मन का टाकरा सिर्फ शस्त्र ही कर सकते ने। हुक्म नहीं है आपां नूं करामात दिखाउण दा। सतगुरु कहिंदे जे मैं चाहां इको फूक दे नाल तुरक सारे साड़ दिया, एक वचन नाल मार दिया, पर यह दुष्टां नूं शस्त्रां नाल कटना है, दैंतां नूं मारना है। इसे प्रकार ये जिहड़ियां नापाक शक्तियां ने इन्हां नूं कटण वास्ते दसम की बाणी है। ताइयों महाराज ने दसम ग्रंथ की बाणी जिन्हें भी जाप साहब के पाठ हो जाण, चौबी साहब के वध तों वध पाठ हो जाण, इसे करके तो महाराज ने यह चौबी साहब के पाठ विच इन्ना कुछ कहा कि चुन चुन सत्र हमारे मारी है। जिहड़े लोग किंतु करते हैं चौबी साहब से, समा आ जाएगा जब तुसी खुद ही कहोगे हां भी चौबी साहब का पाठ जरूर करो, क्योंकि यदि जरूरत पै जानी है जाप साहब की बाणी। फिर इस प्रकार आइयो सतगुरु महाराज ने आपां नूं गुरबाणी बख्शिश की, जपजी साहब जाप साहब सवैये चौबी साहब आनंद साहब का पाठ। सो इहदे विच भी बहुत विचार वालियां चीजां ने जिहड़ियां मौके मौके ते आपां नाल नाल विचारांगे, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब 84 लाख जून दे मालक ने, इन्हां नूं सारे ही मत्था टेकदे ने। सो इस करके जदों दुश्मन नूं कट्टणा हुंदा खास करके उदों फिर जदों दा पापां नूं कट्टणा उदों बाणी पढ़ी जांदी है। जदों ऐसियां भैड़ियां आत्मावां नाल टाकरा पैंदा उदों दसम दी बाणी पढ़दे हां, उन्हां नूं चीजां नूं नाश करदे हां। इस तरह महाराज जी ने आपां नूं गुरां दी बाणी, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी, दसम दी बाणी ताइयों खालसे नूं बख्शी।

सतगुरु किंदे कर हर ट माला टिंड प्रो ध्यान दियो जी जग दियां रूहां एकाग्रता बख्शियो इहदे आ जिहड़े सवास आ इन्हां नूं आ बजुर्गां ने वेख्या खूह वगदे सी खूह आखो वाहिगुरु वाहिगुरु गल करो वाहिगुरु खूहां दे विच इक चीज पानी भरन नूं जिहड़ी वगदी सी उहनूं कहिंदे माल ते जिहड़ियां माल दे उत्ते हुंदियां सी उहनूं कहिंदे टिंडां उहनूं टिंडां कहिंदे कर हर ट इक खूह बणा आ जिहड़े सवास ने तेरे इहनां नूं माला बना के माल बना के एक एक सवास नूं टिंडा बना महाराज इस माल नूं खिचे कौन एकाग्रता बख्शे इस माल नूं तेरा तू आए नूं खिचे कौन इस पीतर मन योग सरवण कीता इस पीतर बलदा दी जगह ते इहनूं खिचण नूं किहनूं योग हां मन जोड़ो जो का मतलब जोड़ दो जो दो आप कहने बलद जोड़ दिते ए खूह दिया माला टिंडा खिंचन लिये मन बलद बनाओ मन तो साडा सिमरन करदिया भी दौड़ता रहिंदा है साहब कहिंदे ने तू मन जोड़ के इन्हां टिंडा नूं खिंच ते अगे जाके कहिंदे अमृत सिंचो अमृत सिंचो अमृत भरो क्यारे बोलना अमृत सिंचो भरो क्यारे क्यारे क्यारे जेड़े खेती बाड़ी करते उन्हां नूं पता है एक छोटिया छोटिया वट्टां पा के खेत दे विच की पा दी दे खेती बाड़ी करते तुहानूं पता पिंडां दे रहिण वाले खेती बाड़ी करन वाले पता क्यारे पा दी दे साहिब कहिंदे ने अंदरों मन नूं जो के आ जिहड़ी सवासां दी टिंडां दी माला इहदे राहीं मन नूं जोड़ के वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु करके क्यारे भर क्यारे क्यारे तेरे सुनिए ने सुख रहे ते मैं धन गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी पुछिया महाराज शरीर ते केड़े क्यारे ने आखो सतनाम श्री गज के बोलो सतनाम महाराज खेतां विच ते क्यारे हुंदे इत्थे क्यारे केड़े कहिंदे अखां नाम जपण वाले दीआं अमृत नाल भर जांदियां अंदरों आना के अमृत अखा जो अमृत वगन लग पा तो सतनाम श्री पढ़ते नहीं ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट बोलो ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट ब्रह्म ज्ञानी इना सिमरन अंदरों जुड़ के करता ओदिया दृष्टि चो अमृत वगन लग पा ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी परसन लग पा है फिर आखिर महाराज होर कि क्यारा भरीये महाराज कहते रसना अमृत नाल भर जी गल कर लगता वा ते कहते फलाना बंदा वचन करता मुंह चो अमृत डोलता नाम जपण वाले की रसना कदी फिका नहीं बोलती नाम जपण वाले की रसना सदा मिठा बोलती अमृत वर्गा साहब कहते ने मन नूं जो इस सवासा की माला अपना मगर ए जे बरतना होया जे मन नूं तू ना विच जोता सिमरन विच मन नूं ना जोड़िया ते टिंडा दी माला चलनी नहीं थल्लेओ अमृत आउणा नहीं ओ इतना है गुरसिखा प्यारिया सारी रात लगा रहेगा बनना कोई नहीं मन नूं विच जोड़ना जरूरी है अमृत सिंचो भरो क्यारे ते अगे लिखे तो माली के ओहो तो गज के बोलो ना तो

आप सज्जना कदी आवाज मारियो, आवाज जरूर मारियो, आउंदा रहियो, आउंदा रहियो, आवाज जिन्हां मारी उन्हां दे घर आउंदा रहियो। धन गुरु ग्रंथ साहिब दी गोद विच बैठा कह रहा जे तुहाडा चौकीदार आउंदा जे आवाज मारियो, फिर एक बार रिपीट करावा, आउंदा जे आवाज मारियो, मारो अंदर आत्मा तो आवाज, आवो सज्जना हां देखा घर अपनड़े खड़ी तका, घर अपनड़े खड़ी तका।

तरला पाओ तरला। जरा शरीर विच उचा लियाओ कि मैं जन्मा तो विछड़ी हां, तो मैं अपने बापू नूं कह रही हां महाराज मैनूं विछड़ी नूं मेल लो,

के मानस संधि आस। जगत नू जीवन देने वाले परमेश्वर धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज अकाल पुरख निरंकार के चरणों विचों जिहड़ियां टुट गईयां ते जिहड़ियां बंदियां दियां बन गईयां, जिन्हां ने बंदियां कोलों नाम लै लै, जिहड़ियां बंदे दे आसरे विच चले गईयां, मानस संधि आस, जिन्हां ने मानस की आस कर ली। अजे रोज सुखमनी विच पढ़दे हो, मनुख की टेक बिरसी सब जान। यह कह दिता है कि बंदे दे उत्ते आस करने वाला बंदा जिहड़ा वा उन्हें भुखे ही रहना है, मगर फिर भी मेरे साहब जी कहिंदे ने करोड़ां इहो जिहियां संसार विच इस्त्रियां ने जिहड़ियां पति परमेश्वर नूं छड्ड के बंदे दे कोल चले गईयां, नाम लै लिया, उन्हूं गुरु धारण कर लिया, उन्हूं रब जान लिया, ते मेरे साहब जी कहिंदे ने उन्हां नूं तपदा महीना लगना है जिहड़ियां जगत दे जीवन देण वाले परमेश्वर नूं छड्ड के मानस संधि आस बंदे दी आस करके बह गईयां। ते मेरे सतगुरु अगे बड़े सुंदर वचन कर दे, कहिंदे दुए पाए वगुचिए, एक नू छड के दूसरे नाल प्यार पाउण वाले नू सदा पछताउणा पैंदा है, ते कल्ला पछताउणा ही नहीं पैंदा, गल पई सो जम की फास, उहनां दे गल विच जमां दी फासी पैणी आ जिहड़ियां अकाल पुरख दे दर तों भटक गईआं। सुहागण दा ते दुहागण दा जदों तुसीं कदी परकर्म पढ़दे हो गुरबाणी दे विच, ते मेरे साहिब नूं पुछिया जी दुहागण किन्नू कहिंदे ने, आखो सतनाम श्री। सुहागण ते ओ हुंदी आ जिहड़ी इक दी होवे, सुहागण ओ हुंदी आ जिहदा पति परमेश्वर जिउंदा होवे, ते जिहड़ी अपने पति दी होके मर जावे उहदे चरणां च समा जाए उहनूं कहिंदे ने सुहागण, ते जिहड़ी इक दा घर छड्ड के घर घर तुरी फिरे उहनूं कहिंदे ने दुहागण। की कहिंदे जी, गज के दसो बाणी दा शब्द आ, दुहागण कहिंदे उहनूं, ओ घर घर हंडे, ओ घर घर हंडे, कदी राधा स्वामियां कोल, कदी निरंकारियां कोल, कदी सच्चे सौदे वालियां कोल, कदी आशुतोष वालियां कोल, गुरमुख प्यारे ओ घर घर तुरी फिरदी, ओ घर घर हंडे ज्यो रन दुहागण, उस नाल मूंह जोड़े उस भी लक्षण लाया। फिर मेरे मालक नूं साहिब नूं पुछिया, महाराज जरा होर खोल के दसो कि दुहागण दी की निशानी आ, कहिंदे दुहागणी क्या निशानी आ, दुहागण किन्नू कहिंदे ने, उहदी की निशानी आ, कहिंदे खसमो कुथियां फिरे नमाणियां, अपने पति दा घर छड के कदी किसे दे बूहे अगे जा बिंदियां ने, मैनू नाम दिओ, मैनू लाइटां विखाओ, मैनू नाम दी दात करो, मैनू अपना बना लो, जिहड़ियां इतना तुरियां फिरदियां ओह ने दुहागणा जीव आत्मावां। ते मेरे सतगुरु पातशाह कहिंदे ने जिहड़ियां दूसरे घर चले गईयां उहनां नूं जिथे वगुचना पैणा पछताउणा पैणा है, अंतकाल ते हरसो हीरा छड के करे आन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सत भाख रवदास। महापुरशां नूं मैं पुछिया, महाराज गुरुद्वारे बंदा कोई नहीं आउंदा, राधा स्वामियां दा लागे डेरा वा, ऐतवार सवेर तो लेके सिख सरदार मोने कोने जिन्ने ने ये सारे इत्थे लैणा विच लगे हुंदे ने, ते इन्ने लोकी कहिंदे परमजीत सिंघा ये नरकां दियां लैणा लगियां नरकां दियां। ते मैं क्या महाराज ये ते बड़ा गुस्सा करदे ने, जे नरक दी गल करिए इन्हां नाल, ये ते कहिंदे सीधे रब दा कॉन्टैक्ट साडा बाबा करवाउंदा है, कहिंदा बाणी पढ़ ला, हरसो हीरा छड के, बोलो हरसो, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह दा हीरा, गुर का शब्द रतन है हीरे जित, ए शब्द छड के करे आन की आस, होर ना दी आस विच जिहड़ियां तुरियां फिरदियां ने, अगली तुक परमजीत सिंह पढ़ ला, ते नर दोजक जाएंगे, उन्हां ने नरका दोजक मने नरक, ते नर दोजक जाएंगे सत भाखे रविदास। ते इत्थे भी मेरे साहिब जी बख्शिश करदे कहिंदे भोलियो, असाढ़ दा महीना ते गर्म लगना ही लगना वा, जिहड़ियां अपने पति परमेश्वर दा घर छड के होर ना थरां ते तुरियां फिरदियां ने, उन्हां नूं जिथे पछताउणा पैणा है उथे उन्हां दे गल दे विच फांसी पैणी, गल पई सो जम की फास, जेहा बीजे सो लुणे माथे जो लिखियास। इन्हां नूं हुण सजा किसे ने नहीं दित्ती, जिहड़े इन्हां ने कर्म कीते ने उहदे मुताबक इन्हां दे गल विच फांसी पई आ, ते सारा जीवन इन्हां ने भटकदियां ने चली जाणा, कदी 10 दिन किसे बाबे दियां, कदी किसे बाबे दियां। ते मेरे साहिब कहिंदे रहण वहाणी फिर पछताणी, सारी जीवन दी रात व्याह जाणी आ, ते पछतावे तो बिना किसे हथ नहीं रहना, रहण वहाणी पछताणी उठ चली गई निराश। इथों निराश होके एक दिन उन्हां ਧਾਵਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡਦੀਆਂ।
ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ, ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਏ, ਜਿਨ ਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਜੇ, ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਏ ਸੋ ਦਰਗੇ ਹੋਏ ਖਲਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਜੂਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਪਣਗੀਆਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤ ਜੁੜ ਕੇ ਆਖੋ, ਜੁੜ ਕੇ ਜਰਾ

एक मिनट लिए शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। यह नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सां, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है। धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नू जगत विच जगया जिदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण हुआ। मगर जे असी अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया है। उसे तरह वर्त रखदे आ, उसे तरह श्राद्ध करवाउने आ, उसे तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आ, उसे तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आ, उसे तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आ। साडे घरां दे विच्चों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

0: आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। गज के आख्या करो तुहाडे परिवार दा भला, तुहाडे जीवन दा भला, पंथ दा भला। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। तरला है ऐरकां दे प्रचार दे विच ते बहुता तरला पाउण दी हुण जरूरत है, क्योंकि नेहरियां बहुतियां आ गईयां। एक पंछी आ सिख पंथ जिहड़ा है ना, एक पंछी लिखिया गुरबाणी दे विच, सरवर पंखी हेकड़ो। बोलो सरवर पंखी। सरवर दा पता है सरोवर। कहिंदे सरोवर दे कंडे उत्ते, इस दुनिया दे सरोवर दे कंडे उत्ते सिख पंथ रूपी एक पंछी है आण के बैठा, शुद्ध मोती चुनने वाला। सरवर पंखी हेकड़ो ते फाई वाल पचास, इहनू फाइयां लैके जिहड़े फंड वाले ने ਉਹ मेरे सतगुरु ने लिखिया वा, पंजाह ने लाख अहेरी एक जियो। इथे आख्या लखा शिकारी ने मगर एक सिखिया केता बंचू काल। किन्ना क चिर बचूंगा इन्हां दे कोलों जे तुसीं सुचेत ना होए, जे अपनी कौम ना जागी, जे गुरु दे सिखो तुसीं एक एक बच्ची बच्चे ने अपना फर्ज ना पछाणिया। ते मैं गुरु दी हजूरी च कह रहा, इनू खतरा ते कोई नहीं, इन्हें मिटना ते संसार विचों है नहीं, मगर नुकसान बहुत हो जूगा। आने वाली सदियां तक घाटा पूरा नहीं होगा, अंधेरियां आ गई जे बहुतियां, ते सुचेत हो जाओ, उठो अमृत वेले, इन्हां तो बचोगे कितना। हुण हर बंदा पुछदा जी बचा की है, जे पंथ नू खतरे चार चपेरे पै गए ते दा बचा की है। इको ही बचा वा कि तुसी सिमरन अभ्यासी बन जाओ। तत्ती वाओ ना लगे ही कदों, जदों पार ब्रह्म शरण आई। एदी शरण विच आ जाओ। सिखो साडे दुश्मन भी तां बने ने, असी तां अज तक नुकसान विच गए हां, असी भी गुरु नानक दा पल्ला छड दिता है। ते आपां जदों मरदाने ने वेख्या महाराज इन्नियां अनेरियां आ रही ने उडा के लै जाणगियां, वेखो लाल अनेरी आउंदी मूंह अड्डी, पता नहीं किन्ने राक्षस विच तुरे आउंदे ने। ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह कहन लगे मरदानिया ए नेरी तेरा कुछ नहीं बगाड़ूगी। आख्या मारक इन्नी अग दी नेरी आ रही उडा के लै जू, मरदानिया कुछ नहीं कहूगी तेरे मुंह चो जे ना रुकिया सतनाम श्री। जे वाहेगुरु ना रुकिया ते नेरियां तेन कुछ नहीं कहणगी। मेरी हाथ जोड़ के पंथ नू बेनती, तुसी पंथ रूप विच बिठे हो ते मैं इस गुरु नानक दे घर दा टुकड़ खाण वाला कुत्ता तुहानू पहलो सचेत कर रहा जे, जे हालात तो बचना है ते नितनेमी बन जाओ। जे हालात तो आउण वालियां ने कई बंदे सोचदे, कई नहीं सोचदे, कई कहिंदे खाना पीना हसना सौना बस इन्ना कुछ ही है, मगर थोड़ा जिहा सुचेत हो जाओ। कोई धरती की विपता नहीं जे जिहड़ी इस वेले पंथ दे दुआले नहीं हुई। मेरी हाथ जोड़ के बेनती जे सारियां मुसीबतां तो बचना वा, जाको मुश्किल अत बने ढोई कोए ना, दे लागू होए दुश्मना साक भी भज खले। इथो तक होर मुश्किल की बन सकती है कि अमेरिका की सब तो वड्डी एजेंसी जिन्हों CIA कहिंदे हो, उन्हें भी लिख दिता है कि सब तो दुनिया की नामराद बीमारी जिहड़ी एड्स है ना, यह सिखा तो फैली। यह छोटा जिहा दोष नहीं जिहड़ा तुहाडे ते लगा है, यह दुनिया च बदनाम करनू केवल इको ही दोष बड़ा है। तुहानू नफरत करनगे हवाई अड्डिया ते खलोते लोकी, तुहाडे कोल बह के राजी नहीं होणगे लोकी, जो उन्होंने अखबार में लिख दिता है कि दुनिया की सब तो भयानक बीमारी जिहड़ी एड्स आ जिहदा कोई इलाज ही नहीं, यह सिखा तो फैली। गुरमुखो इहदे तो बचना कितना है। सच्चे मार्ग चलदिआं उस्तत करे, सच्चे मार्ग उत्ते आ जाओ। दुनिया के अखां विच घट्टा पा दूगा मेरा गुरु नानक, सारे तुहानू सज्जण समझण लग पैणगे, सानू गुरमुख समझण लग पणगे, मगर साडे चेहरे तो हुण गुरमुखता ही लभदी नहीं, साडे चेहरे तो नितनेम लभदा नहीं, साडे चेहरे तो नजर नहीं आउंदा सतनाम श्री वाहिगुरु दा सिमरन। मेरी हाथ जोड़ के आप जी नू बेनती है, कौमां जीवन दे विच ओही सफल हुंदियां ने जिहड़ियां अपने मुढ नाल जुड़ियां रहिंदियां ने। मेरा सतगुरु कृपा करे, रहमत करे, बचन तां करन नू बहुत दिल करदा फेर सही। साहिब जी कहिंदे काली जिन्नी ना रावया, बोलो काली जिन्हां ने काले वालां विच परमेश्वर नू नहीं पाया, धौली रावे कोए धौली रावे। बाबा फरीद जी कहिंदे धौली दे विच ते फिर किसे ही रावया है ना, जिन्हां ने काले काले वाला विच जदों भज सकदा बह सकदा उठ सकदा नाम जप सकदा है, जे उदों परमेश्वर दी बंदगी नहीं कीती ते धौलियां दे विच ते कदों परमेश्वर मिलण लगा है। हां जी
1: कल साई स्यों पिरहड़ी रंग नवेला होए।
0: बाबा फरीद जी सुचेत कर रहे ना, वैसे कहिंदे पिरहड़ी हुंदा प्रेम, कर साई स्यों पिरहड़ी। फरीदा उस मालक नाल प्रेम कर, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਨਵੇਲਾ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿਚ ਰਹੇ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਨੋਖਾ ਤਾਜ਼ਾਪਨ ਦਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ, ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀ ਰਾਵਿਆ ਧੌਲੀ ਵਿਚ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਈ ਨਾਲ ਬਿਰਹੜੀ ਕਰ, ਪਿਆਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵੇਖਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ,
1: ਮਹੱਲਾ

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जुड़ जाओ वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वचन नु समझो कहिंदे ने गुरु अर्जुन देव महाराज पातशाह कहिंदे मेरा गुर मेरा गुरु पूरा सुख दाता मेरा पूरा गुरु जड़ा है कादा दाता है जी सारे आखो कादा सुखां दा दाता है सर्व सुखां का दाता सतगुर ताकि शरणी पाई है इथे कहिंदे ने मेरा जड़ा पूरा गुरु है सुखां दा दाता है ते अगले वचन वाल मैं आप जी की तवजो देवनी चाहना कहिंदे बंधन काट करे मन निर्मल केड़े बंधन ने जिन्हां नूं कट के ओ गुरु मन नूं निर्मल करदा है पवित्र करदा है गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह दा जदों तुसीं इह वचन पढ़दे हो भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वडभागी पाया सिमर मना राम नाम चतारे बासरे हिरदे गुर चरण बिहारे ते अगे जाके मेरे सतगुरु कहिंदे काम क्रोध लोभ मोह मन लीना आ जे बंधन काम क्रोध लोभ मोह मन लीना लीना दा इत्थे मतलब लीन हो गया कादे विच काम क्रोध लोभ ते मोह दे विच मन हो गया लीन ऐसा फस गया ऐसा फस गया कहिंदा इत्थों ते बाहर होया ही नहीं जा सकदा मोह ते छड्डिया ही नहीं जा सकदा कोई कहिंदा जी काम बहुत बली है ये छड्डिया ही नहीं जा सकता कोई कहिंदा जी मेरा गुस्सा हटदा ही नहीं कोई कहिंदा लोभ मेरे को छड्डिया ही नहीं जांदा ऐसा लीन हो गया इहदी गुलामी विच फस गया ते मेरे सतगुरु पातशाह जी कहिंदे ने काम क्रोध लोभ मोह मन लीना जदों लीन ही हो गया ते होर कोई चारा ही ना रहा ते फिर गुरु दी शरण विच आण के इन्हें हाथ जोड़ के आख्या एक कोट पंच सिख दारा पंचे मांगे हाला सतगुरु एक ऐसे किले दे विच मैं रह रहा जिहदे विच पंज सिकदार ने काम क्रोध लोभ मोह हंकार ते पंजे ही मेरे कोलों आण के मामला मंगदे ने आखो सतनाम श्री पंचे मांगे हाला जिमी नाही मैं किसी की बोई ऐसा देन दुखाला हे महाराज इना दुखी करदे ने इतना दुखी करदे ने मैं किसी दी जमीन भी नहीं बोई ए पंजे आण के मेरा जो कुछ हुंदा लुट के लै जांदे ने हर के लोगा मौको नीत डसे पटवारी हरी दे लोगो सत्संगियो मेनू एक एक नित नित हर दिहाड़े मन रूपी पटवारी इन्हां पंजां दी फौज लेके आण के सब कुछ लुट के लै जांदा है ते महाराज मेरी कितों पेश नहीं जांदी ते हुण वास्ता पाया सो उपर पुजा कर मैं गुर पै पकारिया पहली गल ते जिन्हू ए सुध आ जाए जिन्हू ए चेता आ जाए के गुरु के प्यारे हो मैं लुटिया जा रहा मैं इस गल का पता भी किन्नू लगा आखो सतनाम श्री फिर एक बार आखो सतनाम श्री वाहेगुरु एक थां ते तीसरे बापू ने वचन किया एकाग्रता बख्शो इस देही अंदर पंच चोर वसे बोलो इस देही अंदर केड़े केड़े जी काम क्रोध लोभ मोह अंकारा ए पंच चोर वसदे ने इस देही विच मगर पता किन्नू घर दे विच ते कोई चोर आ जाए ते ओदी रबट लिखाउण जाने आ जी मेरे घर चोरी हो गई चोर आ गया हालांकि की चीज चुकी टीवी चुक लिया $500 दा हो $1000 दा हो ओदी रिपोर्ट ते कराने आ मगर जिस घर विच 24 घंटे पांच चोर लगे ने कदी एदी रिपोर्ट लिखाउण गए हो कदी आख्या जे जाके हर के लोगा मौको नीत दसे पटवारी कदी रोए हो गुरु दे अगे कोई बच्ची दसे कोई भरा दसे कोई गुरमुख प्यारा दसे जितना गुरु नानक पातशाह दी बाणी ने आख्या उपर पुजा कर मैं गुर पे पकारिया मैं बाहां खड़ लिया उचिया बाहां उदो खड़िया करी दिया जदों हार जाइए आखो सतनाम श्री चेता करियो जदों जंग हुंदी आ दोवां पासिआं तों ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਖੜੀਆਂ ਕਰੇ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਇਹ ਪੰਜ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਬਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਹਾਂ ਵੱਡ
ਦੁੰਦਰ ਤੇ ਮਨ ਮਵਾਸੀ ਰਾਜਾ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬਿਠਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਈ। ਉੱਪਰ ਭੁਜਾ ਕਰ, ਭੁਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਤਰਾ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਾਵਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਪਿਆ, ਹਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੌਕੋ ਨੀਤ ਡਸੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਉੱਪਰ ਭੁਜਾ ਕਰ ਮੈਂ ਗੁਰ

मेरा सच साहेब मेरा नानक बोले बुलाया तेरा धन गुरु ग्रंथ साहिब पिता जी नानक बोले

गर्भ न बसे, प्रभ के सिमरण दुख जम नसे, प्रभ के सिमरण रिद सिद्ध नौ निध, प्रभ के सिमरण ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभु दे सिमरन दे उत्ते ही विश्वास नहीं करदा कि ओ सिखिया गुरु दे सिखो एदे घर ते आण के डिग के ए कहना है मेरे सतगुरु हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चाले गुर चाली, सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली। हे गरीब नवाज हम अज्ञान अल्प मत थोरी, हे मेरे सतगुरु असि अज्ञानी थोड़ी मत दे जीवियां, साडे ते कृपा कर सानू समत बख्श। इस घर दे फैसले सुनी दे ने, इस घर ते फैसले थोपी दे नहीं, इस घर दे नाल जुड़ी दा है। इस घर ते आण के आखीदा तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोड़ी राम, मगर अज जिहड़ा दो किताबां पढ़ लैंदा कहिंदा नहीं मेरी मत ज्यादा है। गुरु घर विच विद्वान पैदा होण, भाई गुरदास जी वर्गे विद्वान पैदा होए ने, भाई वीर सिंह साहब वर्गे विद्वान पैदा होए ने, होर कई गुरमुख प्यारियां रूहां इस घर विच विद्वान पैदा होईयां है, मगर गुरमुख प्यारे ओ विद्वता गुरु तो उच्ची नहीं, अपने आप नूं नीवां करके रखना है। ते मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह ने भाई नंद लाल कोलों जूठे बर्तन साफ करवाए, इतिहास के पन्नियां विच आउंदा है मेरे सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह आप सिखां दे जोड़े साफ करते रहे। आओ आपां भी उस रस्ते नूं अडाप्ट करिए, आपां भी उस रस्ते ते गुरसिख मीत गुरु दी चाल उत्ते चलिए। अज साडे कोलों गुरु दी चाल, आ कुर्सियां ते बह के लंगर खाना सी ना जिहड़ा, आपां गुरु दी चाल तो भटक गए। जे गुरु दी चाल, हर चाल गुरु दी उत्ते चलिए, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। एक कथा निराली जिहड़ी आ गुरु दे कहे होए बचन, मेरे सतगुरु कृपा करे सिख नूं कमाउणे आ जाण। अज मन विच सोच रहा सां, एक बार आखो सतनाम श्री। 1978 तों बाद गुरु दे सिखो गुरु नानक दे घर दे टुकड़ खाना वा दर्द ते आउंदा ही आ। 1978 तों बाद इस कौम दे पैर नहीं लग रहे, नित कोई ना कोई ढेंदी कला दी खबर सुनदे। 1978 तों बाद कोई भी एहो जिहा दिन नहीं आया जिदन मेरी कौम ने कोई चढ़दी कला की गल की होवे कि कौम कठी हो गई आ, इस कौम नूं सतगुरु गरीब नवाज ने आ कर दिता है, इन्हां कठे बह के आ गुरमता कर लिया। आ थोड़ी ठंड कल पई है, जिहड़ा नरेंद्र गरेवाल दे बरखलाफ 10,000 प्राणी एकदम खड़ा हो गया। मेरा सतगुरु कृपा करे मेरी कौम सचेत होवे, जिथे वेखे के गुरु पंथ तो उल्ट कोई जा रहा है सिख सिख दे, उदो ए ना सोचे कि मैं इस धड़े दा वां। पहली गल ते धड़ा सिखी विच है ही नहीं, आखो सतनाम श्री। धड़े दा काम सिखी विच है ही नहीं, जिथे वैर ते विरोध आ उथे गुरु नानक दा घर ही नहीं। गुरु नानक दा घर यार रोज कहा जांदा होवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, ते उथे चार डंडियां होण ते चार भी आपस दे विच तिड़कियां होण, चौवां दी मत ना मिलदी होवे, चौवां दी मत इक गल ते ना खलोंदी होवे। मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह कृपा करन, ए जिहड़ा बेस बनना है, ए जिहड़ा मुड तुहाडा ते मेरा बनना है, गुरु दियो प्यारियो सेवा ते सिमरन नाल बनना है। ते आओ मेरा सतगुरु कृपा करे मन विच किते शंका ना लियाउणा, प्रभु दा सिमरन करना पखंड नहीं, सारी सारी रात बह के कीर्तन करना जगराता नहीं, सारी सारी रात बह के सतगुरु गरीब नवाज दे चरणा नाल जुड़ के ओदी उस्तत विच जागना, जागन नीका हर कीर्तन में जागना चंगा है। सारी सारी रात मेरे सतगुरु की याद विच जुड़ के कोई चौंकड़ा मार के सिमरन करे। ते आओ गुरु नानक पातशाह दे चरणा ना अपनी सुरत जोड़ो, शब्द सिद्धांत विच आण के नक की करुंबली ते सुरत टका के सतगुरु के चरणा विच जुड़िए, आपां वाहेगुरु गुरसिमरन दे विचों आनंद लईए। गुरमुख प्यारियो भगत भीखन एक ऐसा बचन कहिंदा, कहिंदे ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुन पदार्थ पाया, अनक जतन कर हिरदे राखिया रतन ना छपे। अगे पढ़ के वेखो, हर गुण कहते कहन ना जाई जैसे गूंगे की मठियाई। ए गूंगे दी मठियाई आ, एदे बारे कौन दस सकदा वा कि जिन्ना चाखिया, जिन्नी चाखिया बोलो जिन्नी, तिनी साध आया तिनी। मेरे साहब जी कहिंदे जिन्ना ने चखिया हो प्यारियो, जिन्ना कदी अमृत वेला संभालिया ही नहीं, जिन्हें कदी केसी इशनान किया ही नहीं अमृत वेले उठ के, ओ बंदे उठ के आखण केसी इशनान करन दी कोई जरूरत नहीं, ओ बंदे आखण अमृत वेले उठन दी कोई जरूरत नहीं। आओ मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह दीन दुनिया दे मालक दे चरणा नाल जुड़ के सिमरन करके वेख लो, हुणे ही पता लग जू आनंद कितना वरदा है। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु।

सचेत हो सतगुरु गुरु नानक पातशाह दी पावन बाणी दे कि जे तेरी गठड़ी दे विच गुण होए जे तेरी गठड़ी दे विच परम पिता परमेश्वर दी बख्शी रहत होई ते परमेश्वर आप तेनु कहूगा आ खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हूं करूं आ प्यार नाल आण के दोवे बावां पहाड़ पहाड़ जड़ियां भारी भजान के भारी भरोसो वड्डियां बावां वाला बापू आखूगा खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की मगरों ता आखूगा जे तू गुणा दी मालक होएगी ते अवगुण वाली नू ते मेरे साहब कहिंदे मेरे कंत ना पावे चोलड़ा प्यारे क्यों धन छेजे जाए मेरे साहब कहिंदे ने अवगुण यारी कंत ना पावे बोलो अवगुण यारी सारे बोलो जरा अवगुण यारी मन की खोटी खोट कमावे मन की खोटी अवगुण यारी उस मालक नू चंगी लगदी नहीं मन दी खोटी खोट कर दिया फिर का सावना जाने मूड़ा अंदरों पिरदा सा ओदे सुभा नू इहने जाणिया ही नहीं कि मेरा पति ते उहनां नाल प्यार करदा जिहड़ियां गुणवंती ने जिहड़ियां गुणां दीआं मालक ने ते आपां इस करके गुरमुख प्यारिओ मेरे सतगुरु दे चरणां विच बेनती करनी आ कि आपां नू सतगुरु गरीब नवाज जी कृपा करो निर्गुण यारे गुण नानके निर्गुण यारे गुण नानके हे मेरे सतगुरु गरीब नवाज मैं निर्गुण यार वां मेरी झोली दे विच गुणा दी दात पा जेड़े गुणा दा जेड़ी रहत जेड़े नाम सिमरन बंदगी जेड़े जीवन दा सदका मेरा ते तेरा विछड़े दा मलाप हो जाए वो

0: आखो सतनाम श्री नाभी चो खिंच के आखो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: कलयुग में एक नाम आधार, बोलो कलयुग में एक, फिर बोलो कलयुग में एक
1: नाम,
0: एक नाम आधार। कलयुग दे विच एक नाम ही आसरा है। धन गुरु अमरदास महाराज दा पावन बचन पिया करो, घट घट कर दे साचा नाम मेरा आधारो, आसरा है मेरा सच्चा नाम, सच्चा नाम मेरा बेस है, सच्चा नाम मेरी टेक है, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा, फिर बोलो जिन भुखा, एक बार रोम रोम दे दरवाजे खोल के आखो जिन भुखा, सच्चे नाम दी वड्याई जिन भुखा, सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसया, जिन इशा सदा कुर्बान कीता गुर विटो, जिस दिया ए

नाम साचा नाम मेरा आधार। सच्चा नाम मेरा आसरा है, सच्चे परमेश्वर का नाम मेरा आसरा है। कलयुग दे विच मेरी इज्जत पत रखण वाला मेरे कोल इक्को ही गहना है, इक्को ही परमेश्वर दी टोक है दित्ती होई जिहड़ी सतनाम श्री वाहिगुरु। नाम वालियां दे अपने सेवक दे पर्दे ढकदा है, अपने सेवक दी लाज पत रखदा है। जेडे नाम जपदे ने ना उन्हां नूं मेरे साहिब जी कहिंदे ने औखी घड़ी ना देखण दे अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रत पाले। जेडे नाम जपदे ने उन्हां नूं रोगन ते अर सोगन ते जल जोगन ते बहु भात बचावे उन्हां ते शतर अनेक चलावत कावत उतन एक ना। कितना रखदा जी, कितना बचाउंदा है, राखत है अपनो कर दे कर कर मने हाथ उन्हां नूं अपना हाथ दे के बचा लैंदा। राखत है अपनो कर दे कर पाप समूह न पेटन पावे और की बात कहां कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावे। माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो वसारिये, मनो क्यों वसारिये ए वड दाता जे अगन में आहार पहुंचावे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। इतना लिखिया गुरबाणी दे विच के मां दे पेट विच ए पुट्ठा, इतना गुरबाणी विच लिखिया है कि जिथे अग्न पखे पड़हारे अग दे लाटां बगदियां सी इहदे चार छफेरे जीव दे उर्द मुख महा गुबारे पुठा मूह थले नू लत्ता तां नू ते बड़ा अनेरा सी उथे जिथे मां दे पेट विच अग विच जल रिहा सी विचारा। मगर उथे ए जप रिहा सी वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह। उथे जो जपदा सी ना इतना शब्द लिखे एकाग्रता बख्शे आखो सतनाम श्री जिथे अग्न पखे पढ़हारे उर्द मुख महा गुबारे ते ध्यान देना है। उथे लिखिया सास सास संभाले सोई, ए सास सास उस वाहगुरु नू याद करदा सी। उथे अग दे विच गुरमुख प्यारे ए 24 घंटे वाहगुरु दी याद विच जुड़िया सी ते उथे फिर अग दे विच उथे खसम छडाए लिया इनू उथे पुठे लड़के नू उथे खसम छडाए लिया। बोलो हां उथे खसम, फिर बोलो उथे खसम। उथे पुठे लड़के नू किन्ने छडाया, खसम दे वाहेगुरु ने, ते जदों इथों छडा के बाहर लै आंदा इतना लिखिया है विचों गर्भे निकल आया। बोलो विचों गज के आख्या करो उस फोटो नू वेख के, उस तस्वीर नू वेख के उथों छडा के किसी ने गवाही दे के एदी जामनी भर के किसी ने उथों छडा के बाहर लिया विचों गर्भे निकल आया। बोलो विचों गर्भे निकल आया। जदों बाहर आया खसम वसार दुनी चित लाया, खसम वसार दुनी चित लाया। फिर बोलो खसम वसार दुनी चित लाया। बस विचों बाहर आया ते ओ जिहड़ा छडाउण वाला सी ओ भुल गया, दुनिया चेते आ गई, मम्मी चेते आ गई, चाचा चेते आ गया, नानी चेते आ गई, फुफी चेते आ गई, हुण ए चेते ने। ते माया अमर वरताया, माया दा हुक्म चलन लग पिया। मेरे सतगुरु कहिंदे जैसी अगन उधर मैं तैसी बार,
ਮਾਇਆ ਜਿਤਨਾ ਅਗਨ ਅੱਗ ਦੀ ਅੰਦਰ ਚ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੜ ਜੂੰਗਾ ਆ ਬਾਹਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਰਲੇ ਪਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਉਹਨੇ ਛਡਾਇਆ ਵਾ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਏ ਇਹ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅਰਬਾ ਸੰਖਾ ਨੀਲਾ ਰੂਹਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਮਮਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਮੋਹ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਕਾਮ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚ ਸੜ ਗਈਆਂ ਈ ਜੇ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਪਿਆ ਕਰ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੈ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਥਾ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ

0: वेखो किन्ने प्यारे चक्कर खंड निवात गोड़ अगे माखियो माझा दुध ए सारिया चीजा आपां किसे ना किसे समय चख के वेखिया। शक्कर खा के वेखी, खंड खा के वेखी, निवात दा मतलब मिश्री खा के वेखी, माखियो दा शहद खा के वेखिया, माझा दुध पी के वेखिया। मेरे सतगुरु ने सारिया चीजा का नां लैके जिन्हां ने चखिया उन्हां नूं इस गल का पता लगा। आखो सतनाम श्री। ए गल उन्हां ने आखे अलौती का जैसे भया बरेडा, बोलो अलौती का जैसे भया बरेडा, जिन पिया तिन जानिया, जिन पिया तिन जानिया। बाबा कबीर कहिंदा है गर्मी होवे ठंडा पानी होवे ते मिश्री दा बनिया होवे शरबत मिश्री दा, अलौती का जैसे भया बरेडा, मिश्री दा शरबत होवे एडा सरबलो दा कौला भरिया, ते फिर जिन पिया तिन जानिया। ये ते जिन्हें पीता है ओनू पता ना फिर मिश्री दा शरबत किन्ना आनंद देई है। इथे भी बाबे फरीद ने जो उस परम पिता परमेश्वर की बंदगी का रस चख लिया ओदी मिठास वेख ली ते हुण कहिंदा नहीं शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माझा दुध ए सारिया चीजा हे वाहगुरु बड़िया मिठिया ने खा के वेखिया ने। हांजी अगे जी
1: सबे वस्तु मिठिया रब ना पुजन तुद।
0: बड़ा प्यारा बचनिया साहब जी कहिंदे ने सबे वस्तु मिठिया। इथे खिलारो एक बार सारे आखो सबे वस्तु जिको आपा कहने ए ते गल ठीक है ए ते गल पर अगे ना पर आवी ते गल है आ गल जेड़ी है होर आनंद दी आ। इथे भी मेरे सतगुरु कहिंदे ने एदे विच कोई शक नहीं कि शक्कर मिठी नहीं, एदे विच कोई शक नहीं कि खंड मिठी नहीं, एदे च कोई शक नहीं कि किते शहद जेड़ा वा माखियो दा ओ किन्ना मिठा है, एदे विच कोई शक नहीं कि माझा दुध किड्डा प्यारा है। एक बार भाई नंद लाल साहब नूं किसे गुरसिख प्यारे ने पुछ लिया कि तेरे सतगुरु गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह ने जदों मुंह दे विचों बोलदे ने उन्हां दा एक एक बचन किन्ना क मिठा है। आखो सतनाम श्री। जरा गज के आखो समा हो चलिया है मेरा गुरु नानक तुहाडियां झोलियां भर के घरां नूं भेजे। आखो सतनाम श्री। जन्मां दे भुखे आयो गुरु नवाज दवे। आखो सतनाम श्री। तेरा सतगुरु जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब बोलदा वा किन्नी क मिठास आ। ते भाई नंद लाल साहब ने छेती नाल आखिया जिन्नी एक खंड दी बोरी मिठी, शक्कर दी बोरी मिठी। ते फिर छेती नाल कहिंदे नहीं नहीं मैं गलत कह बैठा, मैनू माफ करियो मैं गलत कह बैठा। उन्हें कहा दस फिर किन्ना क मिठी है। उन्हें फिर एक बोरी दो बोरियां करदे करदे कहिंदे ने आ दो जहान लोक ते परलोक शक्कर दे बन जाण, लोक ते परलोक शक्कर ही हो जाए। ते जिन्नी ओदी मिठास आ ओ मिठास मेरे गुरु गोबिंद सिंह साहब दे एक बजन दे बराबर नहीं। मेरा गुरु इना मिठ बोलड़ा है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, मिठ बोलड़ा जी ओ मिठ बोलड़ा इना मिठा है। ते साहब जी कहिंदे ने ए सारियां वस्तु मिठियां ने सबे वस्तु मिठियां मगर रब ना पुजन तुद। मैं शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माझा दुध दी सारी मिठास एक पासे पाके वेखिया मगर एक पासे हे अकाल पुरख तेरी मिठी बाणी पाके वेखिया, तेरा मिठा सुभा पाके वेखिया है मगर तेरे मिठे सुभा दे बराबर ए मिठास नहीं पुजदी। सबे वस्तु मिठिया रब ना पुजन तुद। हां जी।

सारे आखो सारे ही हुण आपां व्यापार करन आया। एक बचन गुरबाणी दे विच मेरे साहब ने बहुत कीमती, वैसे तो एक एक बचन कीमती गुरबाणी सारी हीरियां मोतियां जवाहरां नाल मड़ी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। एक शब्द बड़ा प्यारा मेरे साहब जी ने प्यारा बचन किया है, कहिंदे तां व्यापारी जानिए। बोलो तां व्यापारी। व्यापारी शब्द बड़ा पछाणिया तुहाडा, तां तुसी व्यापार करन ते सारे ही आए हो। हर बंदा घरों व्यापार करन जांदा है, मगर जेड़ा घाटा खा के चल जाए ना मेरे मित्रो गुरसिखो भाईओ, ते उन्हूं लोकी कहिंदे नहीं इन्हूं व्यापार करना आया ही नहीं, जेड़ा घाटा खा के चल। तां वा गुरमुख प्यारियो के कुछ तां व्यापारी जानिए लाहा लै जाओ। लाहा व्यापारी ते तां ही किसे कहना लै भी इहदे प्यो ने 10 रुपया की रास पा के दी सी, इह 10 दे नाल 100 कमा के लाया, बड़ा वड्डा व्यापारी है। मगर आपां नूं ते गुरमुखो मूल दिता परमेश्वर ने सुवास, आखिया एक एक सुवास दे नाल परमेश्वर दी बंदगी करके लाहा खट के आई। मगर इथों कोई गुरमुख रूहां ते लाहा खट के चले गईयां, मगर मेरे वर्गे मनमुख प्यारे जेड़े मनमुख दियां गल्लां मन दियां गल्लां सुनदे रहे, मन पिछे लगे रहे, गुरु दी गल ना सुनी, ए ना सुनिया पीओ पौल खंडे धार होए जन्म सोहेला, ते मन दियां गल्लां सुनिया के शराब पीला, जेड़े मन दियां गल्लां सुनदे रहे। मेरे साहब कहिंदे चले मूल गवाए मनमुख चले।

0: गुरु आखो जी सतनाम श्री भाई रे भाई रे राम कहो भाई रे राम कहो बोलो भाई रे
1: राम कहो
0: चित लाए हर जस वखर ले चलो इथो जान लगे पंडा बन के जाओ इथो जाके लाद खेप संतें संग चाल जिस वखर को लैण तू आया राम नाम संतन घर पाया ताजब मान लिहो मन मोल राम नाम हिरदे में लाद खेप गड्डे लद के जदों सरकारे दरबारे जावे तू निरंकार दे दरबार विच उथों तक तेरे गड्डे खलोते होण ते पुछण भाई कौन आया है ते आखणे भजनीक सिंह आया है ए जरनैल सिंह आया है ए रजिंदर सिंह आया है ए गुरु का प्यारा आया है की करके जी ए गड्डियां दे विच की भरिया है ते किते ऐसा ना होवे फोल फोल के वेखिए ते विचों चुगलियां निकलन विचों निंदिया गड्डे ते दोवां दे लदे जाने ने चंगियाईयां बुरियाईयां बोलो चंगियाईयां फिर एक बार आखो कादे गड्डे लदे जाने चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म हजूर उस धर्म की हजूरी विच जाके धर्मराज के हजूर विच दो ही चीजा ते परखियां जानियां बंदिया तेरिया चंगे ते मंदे कर्म ते वेख कोई एहो जिहा कर्म कर तेरी एक एक पंड दे विचों निकले सतनाम श्री वाहिगुरु तेरी एक एक कहो नानक समझ रे एने आज काल खुले तेरी गांठुली बोलो आज काल खुले तेरी आ बचन जरा चंगी तरह बोलो कि अज जा कल उथे जाके तेरी गठली खुलनी गांठुली गांठुली मैने गठ इथो जज हुंदा बाणी विच मेरे साहब कहिंदे ने कि गठा मार रहा बंदा हर रोज इहदियां गठा बन रही ने ते कहिंदे कहो नानक समझ रे आने बोलो कहो नानक समझ रे हे मेरे आने मना हे आने जीव ए गल समझ ला कि आज काल खुले तेरी गांठुली बोलो आज काल खुले तेरी उथे निरंकार दे दरबार च तेरी गठ खुलनी है चेता कर उस गठ दे विचों की निकलूगा किते चुगलियां ना निकलन किते निंदिया ना निकले किते शराब दियां बोतलां ना निकलन किते मास ना निकले किते कुकर्म ना निकलन जेड़ी जेड़ी तेरी गंढ परमेश्वर खोले उहदे विचों निकले सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु
1: सतनाम वाहेगुरु
0: भैणो गज के
1: सतनाम वाहेगुरु
0: मेरियां धीआं गज के जरा बोलो।

मेरे गुण बहुते मैं एक ना जानया, मैं मूर्ख किश दीजै। प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, डुबदा पत्थर लीजै।

0: सगल भवन के नायका, सगल भवन के एक छिन दर्श दिखाए जी, एक छिन दर्श दिखाए जी, एक छिन
1: दर्श दिखाए जी, एक छिन दर्श दिखाए जी।
0: हाथ जोड़े तरले पाए, कुटिया विच बैठे कोड़े ने सिख ते प्रशादा सुट के चले गया, मगर एदे तरले ते एदियां बौड़ियां ओ जड़ा विण बोलिया सब कुछ जानदा है ना। एक भाई गुरदास जी ने वचन पढ़िया, आखो सतनाम श्री, कहिंदे जे रब नूं आवाज मारना हाथी ते कीड़ी, ध्यान दिओ हाथी ते कीड़ी। हुण हाथी बड़ा उच्ची कड़ाउंदा है ते कीड़ी बेचारी दी आवाज किन्नी है, ते भाई साहब नूं पुछिया जे हाथी आवाज मारे कीड़ी आवाज मारे ते रब दे घर किहदी पहलों पहुंचदी, ध्यान दिओ किहदी पहलों पहुंचदी। ते भाई गुरदास जी कहिंदे ने कीड़ी दी पहुंचदी, क्योंकि नमाणी होके आवाज मारदी, क्योंकि ओ नमाणी होके नताणी होके आवाज मार दी है। इन्हें भी नमाणे नताणे होके बेनती की, हे साहबा सारे पिंड वालिया कोल चरण हैगे, हथ हैगे, अखां हैगियां, मैं ते गरीब एक आदमी ते मेरे मन विच भी हुण चाह पैदा हो गया है, दर्श तेरे की प्यार

वाह वाह वाह वाह वाह, अच्छा ऐनी प्यास लाग गई हो, ऐनी अंदर तड़प पैदा हुई हो, ऐनी वो तो बिना उदास हो गई है, सिर देन नु तैयार है। आंधी हां सजना नैन हमारे तेरे आ रंग रंगारे, मेरिया अखा ओ रंग विच रतियां गई ने, 24 घंटे होर किसे नु नहीं देख दिया, 24 घंटे गाउंदियां ने, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी पावां तरला तुसीं वी, एक भोरी दर्शन दी जय, एक

सोहेला हो जन्म सोहेला हो ते फिर घर खड़िया उन्हें मेनू वखाया अजीबो करीब मंजा रखिया है मंजे दे उत्ते बलविंदर सिंह दी फोटो लाई फोटो दे कोल चौर रखिया है मैं क्या कदी आया है कहिंदा आया मेरे घर मैं क्या ओदे सामने ओदी फोटो दे चौर करदा सा कहिंदा जी ओदी सामने ओदी फोटो दे चौर करदा सा आखिर मन विच की छुपिया इन्हां लोकां दे शर्म भी नहीं आउंदी लज्जा भी नहीं आउंदी कि एक बंदा होके मेरी फोटो दे उत्ते कोई चौर करे चलो मगरों कोई अज्ञानी करे चवर तख्त दा मालक ते धरती ते इको ही गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जी ते चौर हो सकता है होर किसे दे चौर नहीं हो सकता 1978 दे विच जिहड़े 13 सिखा गुरमुख प्यारिया ने शहीदी पाई सी इसे करके पाई सी कि निरंकारी बाबा अपने सिर ते चौर करवाउंदा सी कहिंदे असीं नहीं वेखणा चौर हो सकता है ते केवल गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते हो सकता है ते गुरमुख प्यारे हो इहदी फोटो दे उत्ते उहने चौर रखे ते चौर करदा है ते मालक दे गुटके उहने मंजी दे थले रखे जांदिआं दास ने पहलो मारी फोटो भवा के उहदी चुक के ते फोटो सुट के मैं कहा सजना इस मंजे दे उत्ते ए चादर जिहड़ी नापाक होई है दी फोटो दे नाल इहनू चुक इत्थे पवित्र चादर विछा जे गुरु दा अमृत लैणा ही ते इस मंजे दे उत्ते हुण पोथियां रख जिथे अगे फोटो सी पोथी परमेश्वर का थान उहनू थां दे जिहड़ी पोथी परमेश्वर जोगी इस करके गुरमुख प्यारे बचना है ते अंदरों अपने उस मालक लई कहना है एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्शन दीजे एक छिन दर्श दिखाए जी एक छिन दर्श दिखाए जी एक आओ हुण जुड़िए नाम जप लो दो छिन फिर सतगुरु गरीब नवाज पातशाह मैं आप जी नूं बेनती कर दवा नामी ताई पहुंचण ला इको ही तरीका है नाम नाम ते नामी दो चीजा दा मेल आ जे नामी दी प्राप्ति करनी आ ते नाम जपना पैना है की करना पैना है नाम जपना पैना है रात दिन अपने रोम रोम विच भरना पैना है वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु

हे साहब जी ए जड़ी रोज अरदास होंदी आखो सतनाम श्री हे साहब जड़ी रोज अरदास होंदी आ खालसे दी भावे अकाल तख्त ते अरदास होवे भावे हजूर साहब अरदास होवे भावे तख्त श्री पटना साहब अरदास होवे भावे केसगढ़ साहब अरदास होवे दुनिया दे हर कोने दे गुरुद्वारे विच हे मेरे सतगुरु सुख मंगी जांदी आ खालसे दी जहां जहां खालसा जी तहां तहां रशिया रियायत रोज अरदास कीती जांदी आ ते मेरे सतगुरु जिन्हां दी रोज अरदास हुंदी आ उन्हां दी कलास दे विच मैनू भी रला ला मैनू भी खालसा बना ला अरदास करो मेरिया भैणा बच्चियां वीर गुरसिख फिर एक एक दा नाम दस के अरदास ना करानी पवे रोज सुते सिद्ध पटीशन हो जाए रोज सुते सिद्ध अरदास गुरु दे घर विच रोज एप्लीकेशन तुहाडी लगे जे तुसी खालसे बन जो ते इस करके परसों ए भागां वाला दिन आउणा है कोई मेरी भैण कोई बच्चा मन दे प्रभाव थले आण के गुरु दा पल्ला ना छड़ दिओ दो तरह दा जीवन हुंदा है गुरु मर्जी ते मन मर्जी गुरु मर्जी ते मन मर्जी ए मन मर्जी होगी जिहड़ा आखोगे अजे साल खलोना है ए गुरु मर्जी होगी कि जिहड़ा कहिंदा हर जपदिआं ढिल ना कीजी मेरी जिंदड़ीए मत जापे साह आवे कहिंदा आवे राम ए गुरु दी मर्जी होगी कि मेरे गुरु दा उपदेश होगा पियो

जुड़ के जुड़ के साहब गुरु नानक पातशाह कहणगे सौदा कर लिया परमेश्वर दे नाल, उस वाहिगुरु परमेश्वर नूं अपना मन वेच दिता है ते आख्या जी दिता है ते कुछ लईदा भी आ, कोई चीज दईए ते उहदे बराबर लईदी। मेरे साहब गुरु नानक पातशाह कहिंदे हां सिद्धों मैं लिया है। कहिंदे की लिया है? कहिंदे मन दिता वा ते खिमा लै ली, खिमा निम्रता लै ली उहदे कोलों, नीवा पन लै लिया उहदे कोलों, निम्रता लै ली, झोलियां भर लिया मन दे के। अज जदों मैं कई बार पढ़दे आ ना, तुसीं भी पढ़दे ते मैं भी पढ़दा सिखां दा रोज पढ़दे हो, मन नीवा ते मत उची। इतना हो गया जी, उल्टी गल चल गई, हुण मन हुण उच्चा हो गया ते मत इतना नहीं लगदा। ध्यान दिओ अपने अंदर झाती मार के वेखो, मन करके ते असीं कोठे ते चढ़े आ, मन करके ते साडे वर्गा है ही कोई नहीं। मन दे विच ते जिन्नू भी वेखदे कहिंदे छड्ड इहदे वर्गा, मैं इहदे नालों चंगा। मन दे विच, मन करके आपां रोज कहिंदे अरदास विच कि हे सतगुरु सिखां दा मन नीवा ते मत उच्ची होवे। मगर कितना दी ए गल हो गई साडे नाल वापर गई, असी मन करके हंकारी बन गए, मत करके नीवे हो गए, मत इन्नी नीवी हो गई आ भरा नूं भरा वेख के राजी नहीं। सिख सिख दा की आ, बोलो जी की आ? जे गुरु गोबिंद सिंह साडा प्यो आ ते सिख दा सिख की लगदा है? इहदे नालों दूसरे भरा ते कदी धोखा दे देणगे? दूसरे भरा नूं ते असी मन्निया है ना कि यह मेरा भरा है, मन करके मन्निया ना। यह ते गुरु ने मोहर कला के दिता कि एक पिता ते तू मेरा गुर हाई, एक प्यो दी औलाद आ, जिन्हें जिन्हें बाटे चो अमृत पीता वा। कमाल दी गल आ, प्यो दा नाम गुरु गोबिंद सिंह आ, माता साहब कौर आ, उसे प्यो दा पुत, उसे मां दा पुत, एक दूसरे दा वैरी बनिया। कदी रहत मर्यादा पढ़ के वेखो, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। मैं बाहर ना चले जावा, सारे मात्र आप जी नूं कहूंगा जो सिख सिख दी चुगली करे, बोलो जो सिख सिख दी सो तनखाइया, सो तनखाइये दा मतलब हुंदा है सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब दी हजूरी च जिस तरह गुरमुख प्यारे चौर कर रहे ने, तनखाइये नूं कोई हक नहीं गुरु दी हजूरी च चौर करे। ध्यान दिओ, जिहड़ा सिख सिख दी चुगली करे, जिहड़ा सिख सिख दी चुगली करके काज विगाड़े, ओ कड़ा प्रसाद नहीं विगा सकदा, प्रचार सकदा, ओ तनखाइये। जिहड़ा सिख सिख दे दाड़े विच हथ पावे सो तनखाइये, जिहड़ा सिख सिख दा मुंह खड़ावे सो तनखाइये। मगर आपां अपने शीशे विच किते झात के वेखीए फिर असी सारे ही तनखाइए, इतना लगदा वा हे मेरे सतगुरु। कदी कहना पौगा हाथ जोड़ के हम बारक मुगद आण, हम बारक

पारक बारक मुख मांगे सो देना, बारक मुख मांगे सो। ए बन गया मेरा पुत, ते आज तो हुण जो मेरा पुत मुंह चो मंगे इनू देना है। ओ आर्डर करके मुड़िया, उन्हें कह दिता, गया कोल गल नाल फिर मत्था चुमया, गल नाल लाया ते आख्या मैं कह दिता है दाता देन वाले नू, सचेत होके बैठो, मैं कह दिता है आके गए ना कि बारक मुख मांगे सो देना। उन्हें आख्या पिता कृपाल आ गया है कीनी, बारक मुख मांगे सो देना। उन्हें ते ए गल कह के मुड़िया, ते पिछे बालक ने आख्या मेरी ते हुण भुखी कोई नहीं रह गई, मैं मंगा की। नानक बारक दर्श प्रभ चाहे, हुण मुक गए ट्रैक्टर मंगने, मुक गईयां गड्डियां मंगणियां, मुक गईयां दुनिया दीयां दौलतां, हुण ते नानक बारक दर्श प्रभ चाहे। बोलो नानक बारक, हुण ते इहनूं पता लग गया असली दात की आ, देख जीवां गुर तेरा दर्शन दे।

जब आद सच नानक खुशी पे सच जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख प्रधान दासन दास कह जन नानक

मूरख मुगदा जन्म भया, परणवत नानक तिन की शरणा, जिन तो नाही विसरिया। परणवत नानक तिन की शरणा, जिन तो नाही विसरिया। परम सम्मान योग चवर शतर तख दे मालक, जुगह जुग अटल साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाए मान खोए बैठे गुरु सवारे सत संगी जनों, संध्या वेले दे दीवान दी आप जी ने हाजरी भरी है। अमृत बचना दा कीर्तन सतगुरु जी दे बख्शे हुए नित नेम सोदर रह राज साहिब जी दा जाप आप जी ने सरवण कीता। आओ मेरे साहिब सतगुरु गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह जी महाराज